का सते डी ई या मलवा रे पिर वो रुम मा द पा गरवार वे ये ना निक कुरुगा रुम मा रिला द मा का लन उर पुक कलैवा।